0: रोमांटिक गाना है।
1: हाँ, पहले भी मैं, हाँ हाँ याद है मुझे।
0: नाइस सॉन्ग,
1: अच्छा सॉन्ग है वो,
0: अच्छा गाना
1: वो इन्होंने गाया।
0: या, वो इन्होंने गाया।
1: अच्छा, विशाल
0: मिश्रा।
1: मिश्रा
0: ओके। एंड there is this one song, मतलब नया गाना नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है, बट समझ ले 3 या 4 साल पुराना रहेगा। एंड आई केप्ट फीलिंग दैट ये गाना अर्जुन कनुंगो, देयर इज दिस आर्टिस्ट, सिंगर है, पॉप आर्टिस्ट है, उसने गाया है।
1: अच्छा।
0: एंड आई केप्ट फीलिंग कि यार सही है, अगर अर्जुन ने गाना गाया तो अच्छी बात है, गुड। मतलब मेरे को पता नहीं था वो बॉलीवुड में भी गाना गाता है। ही इज एक्चुअली वो अंग्रेजी गाने बनाता है, हिंदी भी गाता है, बट वेस्टर्न
1: गाने ज्यादा है।
0: तो मेरे को लगा था सही है, ठीक है, बट नहीं, दैट सॉन्ग वॉज ऑल्सो और इज ऑल्सो संग बाय विशाल मिश्रा। सो विशाल मिश्रा reminds me of Arjun, and Vishal Mishra also reminds me of Ash King. But jab hi I listen to Vishal Mishra, I like listening to Vishal Mishra.
1: Okay, matlab usi ke song sunne ka bar bar man karta hai?
0: Nahi, aisa nahi bolunga. It's just that like I said, wo modulate bahut acche se karta hai. Wo
1: वो एक एक वर्ड को समझता है,
0: ये बोलोगे आप। हाँ,
1: और अब मतलब ऐसा होता है कि कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाना गा रहे हैं, और कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाने का जो मीनिंग है उसकी इमोशंस के साथ, मतलब इमोशंस के साथ गा रहे हैं, तो द मीनिंग कम्स आउट वेरी वेल।
0: देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई डोंट रियली लाइक अबाउट मेनस्ट्रीम movies या movie के गाने।
1: अरे हाँ, आजकल तो
0: नहीं, there is this one particular thing, और ये ऐसा नहीं कि अभी सही हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। I don't know why that is, कि कोई एक अच्छा सिंगर है, उससे गाने गवाएंगे, फिर उसी के गाने चलते रहते हैं, ठीक है, वो गाने बहुत अलग अलग के गाएगा, अलग टाइप के गाएगा, but for a period of say 5, 7, 10, 12 years बस उसी के गाने चलते रहते हैं। गाने बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए तो वो ट्रेंड में रहता।
1: Exactly.
0: And then suddenly वो फिर बंद हो जाता। And then some singer. And then suddenly
1: he takes a break ना?
0: नहीं। And then suddenly a new singer is in trend now. जैसे
1: I don't know.
0: अब जैसे जैसे थोड़े टाइम पहले तक मोहित चौहान वाज एवरीवेयर, ठीक है, उसके बाद में अरिजीत सिंह वाज एवरीवेयर, ठीक है, अभी अरिजीत सिंह इज नॉट दैट मच, उतना ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, जितना पहले था ठीक है। अभी विशाल मिश्रा का ट्रेंड शुरू हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी तक आया नहीं है वहां पे,
1: पर जैसे तूने बताया ना कि वो जैसे गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद,
0: एंड इट्स इट हैज नथिंग टू डू विद द सिंगर्स,
1: इट इज टू डू विद देयर
0: इंडस्ट्री राइट। माय क्वॉम इज और ये मैं पहले बोल चुका हूँ, माय क्वॉम इज, मेरे को ऐसा लगता है कि अ गुड सिंगर डेवलप्स with his age, his singing matures with his age.
1: I would say the same for an actor.
0: क्योंकि
1: artist हो ना आप.
0: Right.
1: तो आपको जैसे, सीखना पड़ता है, आपको break लेना पड़ता है.
0: हाँ, अभी जैसे KK, ठीक है, वो जब भी आया था, तभी वो जिस तरह से गाना गाता था, ठीक है, and then towards the peak, मतलब absolute peak, the Imran Hashmi phase. उस तरह से वो वाले गाने उसने जिस तरह से गाए हैं, वेरी डिफरेंट, बट देन यू कैन सी कि हाउ ही हैज मैच्योर्ड। पहले भी ऑफ कोर्स पहले भी बहुत अच्छे गाना गाता था, बट देन द सिंगर डेवलप्स अ फ्लेवर राइट,
1: और एक यू नो जो उसके श्रोता होते हैं, तो उसको सुनने वाले होते हैं, वो पहचान जाते हैं
0: राइट,
1: और उनको समझ में आता है कि अभी क्या इमोशंस,

0: इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉन्ग में ऑफ कोर्स सब कुछ जरूरी है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा जरूरी है, लिरिक्स जरूरी है, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगर होता है ना, जो भी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में गा रहा हो, बट यू कैन समहाउ अंडरस्टैंड द इमोशंस.
1: यस, इसीलिए काफी बार काफी सारे गाने दो अलग सिंगर से गवाए जाते हैं.
0: अच्छा, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट.
1: हाँ, ये नहीं पता एक जस्ट टू एक्सपेरिमेंट और व्हाटएवर, बट होता है ऐसे, बहुत बार होता है. और दोनों गाने बहुत फेमस होते हैं. ऑन टॉप ऑफ माई हेड मेरे को अभी याद आएगा तो मैं याद दिलाता हूँ, एक सलमान खान की पिक्चर आई थी लकी.
0: हाँ हाँ, याद है मुझे.
1: ठीक है, उसमें थी स्नेहा उलाल,
0: लकी लिप्स, एक गाना भी था उसमें.
1: हाँ, तो उसमें एक गाना है सुन जरा,
0: सुन जरा.
1: ठीक है, वो दो सिंगर्स ने गाया है, एक सोनू निगम ने. ठीक है, तो पहले सोनू निगम का फेमस हुआ.
0: अच्छा,
1: ठीक है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलराइज किया ही नहीं गया था, या फिर हुआ नहीं था, या फिर मेरे को मालूम नहीं है कि सेम गाना अदनान सामी ने
0: भी गाया है.
1: आई पर्सनली प्रेफर अदनान सामी का गाना.
0: ओके,
1: आई डोंट नेसेसरीली लिसन टू अदनान सामी सॉन्ग्स, वेरी टैलेंटेड सिंगर अगेन, बट दैट पर्टिकुलर सॉन्ग I prefer listening to the Adnan Sami version.
0: ऐसे बहुत सारे, नहीं ऐसा पहले भी होता था, ये तो बहुत सारे, बहुत पुराना ट्रेंड है.
1: हाँ,
0: कि अलग अलग सिंगर से गवाओ और देखो कि, क्योंकि हर किसी का पिच अलग है, हर किसी की आवाज अलग है और लोगों को पहचान में आती है.
1: हाँ, तो the point that I was making is कि ये जो अब फ्लेवर निकालते हो ना, ये 10 साल हम खाली मोहित चौहान को सुनेंगे.
0: हाँ.
1: और उसके बाद में अपन खाली अरिजीत सिंह को सुनेंगे. हुँ. और उसके बाद में अपन खाली विशाल को सुनेंगे. और उसके बाद में अपन खाली सोनू को सुनेंगे. Rather than doing this, why not have them sing at the same time? अरिजीत सिंह को नहीं गवाने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
0: he should remain in the scene.
1: हाँ, he should remain, he should stay in the scene. Right. That is how, that is what my point is.
0: But no, they do stay in the scene. वो थोड़ा break लेते हैं.
1: नहीं, किधर? Where is Mohit Chauhan? Tell me the
0: last. अभी हाँ. Actually, Mohit Chauhan, हाँ, सही बोल.
1: Tell me where is Sonu Nigam?
0: Sonu Nigam. Oh, he has disappeared. That's correct.
1: वही तो मैं कह रहा हूँ. तो it is not the singers.
0: But he was a very, उसका voice बहुत ही unique था.
1: अभी भी अच्छा
0: है. हाँ,
1: अभी भी काफी अच्छा है.
0: हाँ.
1: अभी भी he is very talented.
0: तो
1: ऐसा नहीं बोल सकते अपन.
0: तो फिर आप हमें
1: that's my plan.
0: तो आप हमें कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं?
1: अभी मैं कौन सा सॉन्ग सुना रहा हूँ? ओके, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 आई है.
0: 3 आ गई है?
1: हाँ, 3 भी आ गई.
0: चलो, गुड.
1: तो अभी नहीं है,
0: टाइम पास
1: हो गया उसको. टाइम हो गया अभी उसको.
0: अच्छा, टाइम भी हो गया.
1: हाँ, टाइम भी हो गया उसको.
0: गुड, टाइम
1: पास. उसका गाना है, और उसका गाना है जानम समझोना.
0: समझोना, ओके.
1: तो अपन वो सुनेंगे और उसके बाद में अपने को रैप मारना पड़ेगा.
0: अरे क्या बात कर रहे हैं, टाइम हो गया.
1: हाँ, टाइम हो गया है. तो अगर गाना फिट होएगा तो मैं फिट करेगा, अगर फिट नहीं होएगा तो मोस्ट लाइकली वो गाना अगली बार बजेगा. तो मनावाटू, धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू अस. और थोड़ा बाहर निकलो, थोड़े रंग देखो,
0: ऑटम के रंग देखो, पतझड़ के
1: ऑटम के रंग देखो, सेल्फी वेल्फी निकालो. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच शिल्पी जी आज मिलने के लिए.
0: थैंक यू मल्हार जी, और थैंक यू मानवटू. फिर मिलते हैं अगले हफ्ते.
1: फिर मिलते हैं अगले हफ्ते.
0: ओके, बाय.